सात दशक, हाँ मोर देन 70 इयर्स और आज भी रेलेवेंट. वीको हैज बीन अ पार्ट ऑफ एवरीडे केयर वेयर आयुर्वेदिक बोटानिकल्स मीट मॉडर्न साइंस. पुराना नहीं, प्रूवन है. वीको अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर.

0: This is Your Sunrise, now nationwide on DAB.
1: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहित।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा रहने।

0: पर दिए गए सभी चाइल्डहुड वैक्सीन्स दुनिया में मिलियंस ऑफ बच्चों ने लगवाए हैं, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड एक्सेलेंट है। प्लीज रिमेम्बर दिस, अपने बच्चे को बेस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए उनके टीके, उनके वैक्सीनेशन टाइम पर लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे ने कोई वैक्सीनेशन मिस किया है, आज ही अपने जीपी को कैचअप के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए। क्या आपके बच्चे के वैक्सीन अप टू डेट हैं? उनके रेड बुक को चेक कीजिए और अपने जीपी प्रैक्टिस से संपर्क कीजिए। फॉर इन्फॉर्मेशन nhs.uk/childhood vaccinations पर जाइए।
1: Listener's Choice, brought to you by Utsav Plus.
2: डर के साथ छुपन छुपाई खेलना बंद करो, हार जाओगी। डर को आंखें दिखाओ, वो खुद रास्ता दिखाएगा।
0: The story of love, healing and second chances. Watch O Hamnawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. only on Utsav Plus. Massive thanks to those who took a moment to vote. Purnima in Wisbeach, you're driving to London, you're expecting the grandchildren on Sunday, you're looking absolutely gorgeous in that shade of green. Love it. Would that be aquamarine? I think it might be. Bhanu is in the car right now with your grandson Pranveer. I just said hello. 07925-700-272 is the number to WhatsApp me on. Aksar 2. Arijit Singh. Aaj zid kar raha hai dil, in case you didn't hear it the first time. Aaj zid kar raha hai dil. जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, होप यू हैविंग अ फैबुलस फ्राइडे। गुड मॉर्निंग।

0: अरे नहीं तैयार है,
1: शायद समझ नहीं आएगी पर याद रह जाएगी.
2: फॉलो जूही इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ जस्टिस करेज एंड ड्रीम्स इन जूही मुई एवरी मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

कड़े पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तो पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।